0: कोई जिंदगी पलों में जीता है, तो कोई एक पल में जिंदगी जीता है। कोई खुशियों में हंसता है, तो कोई गम में रोता है। अरे जिंदगी के इस सफर में हम सब चलते चलते थक जाते हैं, फिर भी ये साई हमारे बिना थके सदा हमारे साथ चलते हैं, सदा हमारे साथ चलते हैं।
1: जब बच्चे अपनी मां की गोद में खेलते हैं तो घंटों का समय क्षणों सा प्रतीत होता है। मां, उसी तरह तुम्हारे पास बिताए ये 2 साल 2 लम्हों की तरह गुजर गए। ओ हमारी साई मां, इस दौरान आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। पिछले साल की शुरुआत जब हमने अकेलापन महसूस किया तो आपने हमें मां का एहसास दिया। जब हमारे आई और बाबा की चिंता ने हमें सताया तो आपने साईं बाबा बनकर उस चिंता को दूर किया। सचमुच मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है।

0: ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ।
1: And how can Tamil Nadu ever forget you, O Lord? Ravi Kiran, Shri Krishna, Sai Prasad and Sai Uddhav echo these feelings.
2: Swami, neengal thai endral naangal ungalai kuzhandhaigal, neengal kuzhandhai endral naangal ungalai vilaiyaadum bommaigal, neengal thaiyaanalum kuzhandhaiyaanalum engalude vaazhkai ungalude kaiyil. Swami,
3: Swami, oru thaiyai தந்தையாய் குருவாய் நண்பனாய் நின்று எங்களை காக்கும் இறைவா, தங்களிடம் எங்களுடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துவது? பன்னூறு ஆண்டுகள் குடிநீர் எங்கே, எங்கே குடிநீர் என தேடி அலைந்து தவித்த சென்னை வாசிகளுக்கு சுவாமி நீங்கள்தான் மனமுருகி கருணையோடு கொண்டலீர் நீரை அளித்து அவர்களின் கண்ணீரை துடைத்து இன்பக் கடலில் ஆழ்த்தினாயே. நீயே எங்கள் கலியுக வரதன் கண்கண்ட தெய்வம்.
4: சர்வதேவதாதீத்த சொரூப ஸ்ரீ சச்சிதானந்த மூர்த்தி, அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி, அகண்ட காருண்யமூர்த்தி, கர்மத்வம்சன், காரணம் பாராமல் கருணை புரியும் கடவுளே, கண்களின் தயையால் எப்போதும் நீர் நிறைந்தவரே, தன் பாதங்களை வணங்குவோர் அகத்தின் இருளை நகத்தின் காந்தியினால் நீக்கும் கலியுக வரதா, கண்கண்ட தெய்வமே, எப்போதும் நான் உன் திருவடியிலேயே இருக்கும் மாறு அளிப்பீர். அபயம் தேவா, அபயம் இறைவா, அபயம் அன்பே.
1: And what do Prantik Sen and Abhishek Banerjee from the state of West Bengal have to say?
5: আচ্ছা প্রান্তিক, বলো তো স্বামীর কাছে এসে আমরা কি শিখতে পেয়েছি?
6: হ্যাঁ নিশ্চয়ই অভিষেক, স্বামীর কাছে এসে আমরা জীবন মূল্য শিখেছি আর ওর মহত্ব বুঝেছি।
5: একদম ঠিক বললে, আর এই জীবন মূল্য আমাদের সন্মার্গ দেখিয়ে ভালো মানুষ বানাতে সহায়তা করবে।
6: আর এই দু বছর যে আমরা স্বামীর সাথে থেকেছি সেটা আমরা জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না।
5: স্বামী আমাদের এই আশীর্বাদ দাও কি তুমি যে আমাদেরকে নিজের সম্পত্তি আর সাই সেনার সৈনিক বলে সম্বোধিত করেছো
6: সেটা যাতে আমরা আমাদের জীবনে সার্থক করতে পারি। স্বামী জননী রূপে পেয়েছি তোমায় জীবনের সব কঠিন সময়, পিতার শাসনে রেখেছ বেঁধে দাওনি হতে জীবন বৃথে।
5: স্বামী মোরা তোমার ছাত্র, পড়তে এসে জেনেছি জীবনের মূল মন্ত্র, কৃপা কর মোর সায়রাম তব শ্রীচরণে মতি যেন থাকে অবিরাম।
6: যেখানেই থাকি থেকো সাথে প্রভু, এই মোর প্রার্থনা, তোমার স্মরণে এত আনন্দ যার নেই কোনো তুলনা।
5: আশীর্বাদ এই চাই তোমার মিশনে যেন যোগ দিতে পাই,
6: অন্তিমে জানাই তব শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম, হে প্রভু তুমি আমাদের প্রাণ।
7: মহারাষ্ট্র পেজ ইটস হোমেজ through the voice of Chandrasekhar.
8: Baal sain se khod karte savang gadi na aikati, mukya bicharya bedkana pakdo na te chhati, binamuni tyana sangitle kiti premanne sain ni, tarihi bedke topalit theviyale hutyani, paramasumangal sain cha divya sankalpane bedka banle kapot ani jhep geti gagani, छेप गेती गगनी, सदा विषय सुखाचा डोही आणि अज्ञानाच्या कर्दमी, असे सदा लोळतो आम्ही, परदिव्य स्पर्श साईंचा उद्धरितो आपल्या जीवा, मुक्तीचा मिळतो मेवा, त्या स्पर्शाने सुंदर शुभ्र कपोत आम्ही बनतो, त्या स्पर्शाने सुंदर शुभ्र कपोत आम्ही बनतो आणि अध्यात्माच्या दिव्य गगनी छेपकी हो घेतो, छेपकी हो घेतो।
1: And finally, from this sacred land of Andhra Pradesh, we have Ravikant.
9: Idi na kada okappadi na vyada, ardha ratri kantu ledu horu gali kalapu ledu, edariki kannu ledu na badaku verapu ledu, pattinchukoni pattanalu paripomantuna pallelu, aasa chiripina kagitam baada nalipina na jeevitam, idantha okappadi na kada, idantha okappati na veda, ఆ నేత్రాలు నా హృదయాన్ని పరిశీలించాయి, నా హృదయాన్ని ప్రతిబింబించాయి, నా జీవనానికి బాటలేశాయి, నా భావనలకు రూపుగీశాయి. ఆ నేత్రాలు అంతెరిగని ఆనంద సాగరాలు, ఆ నేత్రాలు అలుపెరిగని కరుణా ప్రవాహాలు, ఆ నేత్రాలు నా ప్రాణదీపాలు, నా హృదయ గగనాలు. ఆ స్పర్శ నా కన్నీటిని తుడిచింది, నా బాధను చెరిపింది, నా మదిని తాకింది, నా ప్రేమను ప్రేరేపించింది, మనసు తులకరించింది, మనసు పులకరించింది, మనసు నృత్యించింది, మనసు గర్జించింది, మనసు స్తంభించింది, మనసు స్పందించింది. నేను కాని నేను, నన్ను కాని నన్ను, నాది కాని నాది చెరిగింది, తరిగింది, వదిలింది. అప్పుడు నా భాష నిశ్శబ్దం, నా ప్రేమ అనంతం, నా రూపు అఖండం. నేనే సత్యం, నేనే శివం, నేనే సుందరం.

0: ऋषभ, हमें ईश्वर का आए 2 साल बीत गए, क्या तुम्हें अपने आप में कोई बदलाव मालूम पड़ता है?
1: वाह गीत, क्या प्रश्न पूछा। जानते हो, इस जगह में रहते मैंने एक चीज जरूर महसूस करी है, वो है मुझ में बदलाव।
0: क्या तुम्हें कोई मधुर पल याद है जो हमने अपने प्यारे स्वामी के साथ बिताया हो?
1: हाँ गीत, पता ही नहीं चला कि ये 2 साल कैसे बीत गए। जानते हो, मैंने एक बार स्वामी से पूछा, स्वामी मुझे मेरा व्यवहार सुधारने की शक्ति प्रदान कीजिए, और स्वामी ने बड़े प्रेम से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, आई एम वेरी हैप्पी। इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, परंतु अब भगवान का संकेत मुझे साफ मालूम पड़ता है। मेरे भगवान मुझे इस राह पे चलने तथा आगे बढ़ने में बढ़ावा दे रहे थे।
0: हाँ, और तुम्हें वो दिन याद है 2 साल पहले वृंदावन से लौटने के बाद स्वामी ने हम बच्चों से पहली बार बात की थी। उस बातचीत के दौरान स्वामी ने हमसे कहा था, हम उनके बच्चे, उनके सब कुछ हैं। उस वक्त स्वामी हमारे मन में एक तरल भाव सा उठा, आप हमारे स्वामी, हमारे प्राण हो। आपने हमें हंसाया और खुशियों से रुलाया,
1: आपने हमें डांटा और फिर प्रशंसा भी की।
0: कठिन समयों में आपने ही हमारा साथ दिया,
1: अच्छे समय में आपने ही अपना हाथ दिया।
0: माँ बनकर हमें अपने ममता के आंचल में समा लिया,
1: पिता बनकर अपनी बाहों में डाल लिया।
0: स्वामी, ये जगह है मोहब्बतों की,
1: मोहब्बत हम और तुम की।
0: इस प्यार में डूब जाने को दिल चाहता है,
1: इस दिल में हरदम यही प्यार रह जाता है।
0: कभी न होने देना हमको तुमसे जुदा,
1: क्योंकि हम तुम पर हो चुके हैं पूरी तरह फिदा।
0: आपको पास पाकर हम दुनिया के इस स्वर्ग में रह रहे हैं,
1: आपके साथ रहकर हम अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं।
0: तभी हम कहते हैं, शान से जियो साई के लिए,
1: प्यार से जियो साई के लिए। तो भाइयों, क्या हम बोल सकते हैं,
0: शान से जियो
1: प्यार से जियो,
0: इस बंधन को सदा बनाए रखो,
1: ना मरो, सिर्फ जियो साई के लिए।
2: स्वामी, इन अ 10th स्टैंडर्ड At the end of a similar program, we told you, thank you, Swami. And then you told us for what? And then we told you, for all that you had given us. And brother, do you know what Swami said?
3: Because Bhagwan, you look deep into our hearts, and in a moment of eternal testimony to your love, you told us, thank you for what? It is my duty.
2: What else can be the definition of a mother?
3: Because Bhagwan, you gave us the love of 1,000 mothers,
2: the care of countless fathers,
3: the solace of a true friend,
2: the guidance of an eternal guru.
3: As we grow up, Bhagwan, we miss the times when you'd walk down the aisle and with a stern look on your face tell us children, shh, keep quiet.
2: We miss those times when you used to tell us, don't sit like this, sit straight.
3: We miss the time when you used to call 4 boys for prasadam and 6 would get up and yet with a twinkle of pride in your eyes remark, see my boys, how disciplined they are.
2: Those times when you would come down and ask us what was the breakfast, and every single time remark that we must eat more. Why go down the memory lane so long? Two days back, Bhagwan went out of his way to give us clothes and make us happy.
3: Bhagwan, you are everything to us. As we grow up, Bhagwan, we realized that coming to you was not about learning A for apple, B for bag, C for cat. It was not about 2 ones are 2 or 2 twos are 4. It was something very different. It was something and everything about you.
2: Swami, if we were to make a garland of all that you had given us, of all our memories with you, Bhagwan, even this gigantic earth would be too small to wear it.
3: Bhagwan, we are grateful to you, not just for what you did, but for that loving way that you did it for us.
2: Swami, you gave us our identities.
3: You molded us into what you wanted us to be.
2: You gave a meaning to our lives, Bhagwan.
3: Bhagwan, at this point of time, we realize that there are just 4 letters that truly describe what all you mean to us and what our heart-to-heart relationship really means. 4 golden letters.
2: L-O-V-E. Love. True and pure love.
3: Love, Swami.
2: And Swami, today we can tell you one thing from the bottom of our hearts, that at every step and every stage of our life, we need you, Swami.
3: But most of all, Swami, we love you, Swami.